0: பிரியத்தம்மா.
1: आपण ऐकत आहात रेडिओ तेना 90.4 FM. 3:11 यानंतरचा डायलॉग आलाय सैफान शेख सरांचा. तर सैफान शेख सरांचा डायलॉग देखील ऐकूयात आणि काय म्हणतात ऐकूयात त्यांच्याच व्हॉइसमध्ये.
2: नमस्कार, मैं नाईकवाडे नगर तालुका मोहोड जिल्हा सोलापूर से सैफान शेख बोल रहा हूँ. बढ़िया, आपने ये जो थीम ली है आज की के डायलॉग्स, हर लिसनर्स को आप कहने के लिए बोल रहे हो, बहुत अच्छी. आपके रिक्वेस्ट के तहत ही मैंने भी आज एक डायलॉग आपको सुनवाने की कोशिश की है, और ये है

0: चलते जाए।
1: वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायनावॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे।
0: मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए।
2: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगले,
1: फिर सुनो तो आगे हमारी

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: करती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? Yes, 1, 2, 3, 4. La la la la la la la. बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया. Musicians, आप लोग मत बजाइए. Ready? 1, 2, 3.